印度的广播电台，现在播送一篇特写，题目是安德拉邦。安德拉邦是丰富自然资源、文化遗产、历史性和未开发机会的

和信德生特别受欢迎。在印度海德拉巴、新德里、旧德里和印度其他地区，尤其是印度北部是非常有名。

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण

इंडिया मंचिताक सुजारा दालाम चबांग पारा एथलेटिक दी कॉमनवेल्थ गेम्स दिंगान मंगांकान पोसीसी सातु दुआ यंगबर सुजारा दे फिनल सरातुस मीटर पुत्रा कैटेगरी ते दुआ एम्पत पुरु तुचु दिलीप महादेव मनिगांकान मेडली एम्मा समिंतारा मोहम्मद बिसिल मोसरिंगातकान मराई पेराक दलाम चबांग मनम्बांग इंडिया मंग मंगाखिड़ी किरा किरा पानिया दे पियाला दुनिया।

पिम ग्लोफुल दालाम कॉन्सर्वासी हाडिमा मुलालुई कबीजान बर्बासिस साइंस तंदुकुंगांग क लंबांगान यांकुवात नगारा इनी किनी मंजादी रूमा भागी हम फिर तो जो पुलु परसेंट पॉपुलासी हाडिमा लियर दुनिया पमांतुआ तावान बर्बासिस टेक्नोलॉजी नाता कलो लोयांग इफेक्टिव धन पर पार्टिसिपासी माचेरा का तेला मम पर कुआत हासिल कॉन्सर्वासी इंडिया जोगा तुरुस मंदोरों कर्जा सामा

सिंहदान इकोसिस्टम हुदान मलस्तारिकान हबीतात हरिमा बरारती मनलिंडुंगी हुतान सुंगाई दान बरबागी स्पेसिस लाइन या हुतान हुतान इनी बरपेरान मंगतो ताता आयर मंजागा कलस्तारियान ताना मंडुकुंग ये बुरकान दरमन हिमबंकान इक्लिम लोकल हुतान जुगा मंगुरांगी इसी को बंचाना सरता वन्य दियाकान लायनान इकोसिस्टम यान मनुपो मदा

0: Don't press it no.
1: Cause sometimes I'm alone, stare out my window.
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी

0: हैंडली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
1: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान

श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूर संचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से

0: पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

0: कर रचा है इतिहास, और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों

0: आम मुकाम हासिल हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा हाई अलर्ट पर है क्योंकि रियासत में नदियों में सतह आब में इजाफे से कहर बरपा हो गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई की है। महानदी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा है और कई नदियों के तास पर गहरी नज़र रखी जा रही है। इंतजामिया ने राहत और तैयारी से मुतालिक इकदाम तेज़ कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भद्रक सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला बना हुआ है, जहाँ हुकाम ने शदीद खतरात वाले इलाके के लोगों से अपील की है कि वह नामजद करदा राहत कैंपों से बाहर न जाएँ। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा में भद्रक जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां जिले के पांच

0: आमी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में ट्रैफिक को मुंतकिल करने से मुतालिक इंतजाम को नाफिज किया गया है ताकि कांवड़ियों और दीगर लोगों के बहिफाजत और खुश असलूबी से आने जाने को यकीनी बनाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ की DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक महीने के लिए राजधानी के कई रास्तों पर ट्रैफिक

0: सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। गुहिरा एमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद बासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800

0: दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या

0: को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। यह केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
0: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था, ये प्रबंधन भी हो सकता है। हम किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
1: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पर देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा होता है, चाहे वो उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली हो या चाहे उसने फॉर्मल एजुकेशन ली हो, चाहे उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हो, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा है। आपने बिल्कुल ही सही कहा कि प्रबंधन का जो बात है वो जीवन के हर पहलू पे है, चाहे समय का प्रबंधन करना हो, चाहे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना हो, चाहे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को प्रबंधन करना हो, या एक जीवन का अपने आप में एक प्रबंधन का स्थान है सर।
0: लेकिन हेमेंद्र जी, आजकल के दौर में

0: जो वित्तीय प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है, इससे आप किस प्रकार देखेंगे?
1: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्ट

0: करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फोमेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से, अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेस की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते
1: तो
0: हैं।
1: एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को उसमें

0: बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया
1: जी
0: जैसे है, या एक हर विश्वविद्यालय में हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास विचार है, अगर आइडिया है, तो वो संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये इकोसिस्टम रातों रात तो नहीं बन सकता है, अब इसमें एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। जैसे बड़े बड़े संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIT IIMs है, इनमें तो ये बड़ा एस्टेब्लिश हो चुका है कि भाई इनमें इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए।

0: आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए, वो अपना आइडिया कहीं डिस्कस करे, फोरम पर डिस्कस करे और उसके आइडिया में मेरिट है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी कि कहीं गांव से कोई आइडिया निकला, किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फंडिंग की गई और वो आर डूइंग ग्रेट।
1: हर कोई चाहता है कि उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो बढ़े और इसके लिए वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने, लेकिन इसमें आगे चलकर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए?
0: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती है, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। पर इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी जब नई शुरुआत करते हैं, और स्पेशली युवा के अंदर वो शक्ति है, भारत के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारी लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया और उसको आप अगर समय देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे और अगर आप संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकते हैं।
1: जी हेमेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो

0: होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी. पर
1: जी
0: आज की डेट में अब इसको मुझे लगता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइम. क्योंकि सबके पास समय तो वही है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी. व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल एंड व्हाट मेक नॉट मी सक्सेसफुल इज द टाइम मैनेजमेंट. तो उस टाइम को जो बेहतर मैनेज कर लेता है वो इतिहास रच लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो एक साधारण बन के रह जाता है.
1: एक देखा जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों? और उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका होती है?
0: प्रबंधन की भूमिका दोनों में सेम है. ओनली थिंग इज, जो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है. उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को प्राइवेट में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरली मॉनिटर किया जाता है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में. एक समय पे इतना नहीं मैनेज किया जा सकता है, पर अब परिस्थितियां वहां पे भी चेंज हो रही है, गवर्नेंस में इफिशियंसी आ रही है, पर एक कल्चरल शिफ्ट होने में टाइम लगेगा. पर अब जो देख रहे हैं हम, अब वो फर्क नहीं रह गया है.
1: तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?
0: उसका कारण यही है सर कि जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन इसीलिए आ रहा है कि अब जो है स्टेक होल्डर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, कंज्यूमर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है. अब ओवरऑल जो सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो
1: जी
0: इसलिए अब पब्लिक सेक्टर भी बहुत ही अकाउंटेबल होते जा रहे हैं, और होना भी चाहिए.

كنا تيس تصدو أردامة ويهرب تكشتين منو بوشيش مبرون تصدو

वही इंसान दुनिया में है कामयाब, वही इंसान दुनिया में है कामयाब, चाहे जर्रा हो कोई या हो।

शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने

सारी बातें। तो आज भी हमारे घर आंगन कार्यक्रम में है बहुत कुछ खास, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थीम मिलन। और श्रोताओं, सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। बारिश, ठंडी हवाओं का मौसम तो ये होता ही है, साथ ही सावन का महीना जुड़ा है भक्ति, साधना और समर्पण से भी।

पवित्र, मंगलकारी और भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। ये जो पूरा महीना होता है वो देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है, और इस समय भक्त स्वयं को साधते हैं, व्रत पूजा जाप करके वो स्वयं को समर्पित करते हैं अपने आराध्य को। आज हर तरफ भगवान शिव के जयकारों की गूंज है, और इस पूरे महीने ये जो गूंज है वो ऐसे ही होती रहेगी। और आज से

जैसा कि हम कह ही रहे हैं, जानते हैं कि सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण करेंगे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को सावन यानी श्रावण मास की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

समाज के निर्माण का संकल्प लें। ये दिन तो विशेष है ही है, इसके साथ आज एक और जो दिन है वो खास है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, जो कि मनाया जा रहा है विश्व स्तर पर। तो बात करते हैं इस दिन की, जो हमें प्रेम, सौहार्द और विश्वास का संदेश देता है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। जी हाँ, इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मजबूत मित्रता विकसित करना और दूर दूर तक मित्रता को बढ़ावा देना है। हर साल 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में ये मनाया जाता है, और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में आधिकारिक मान्यता दी। श्रोताओं, इसका उद्देश्य विभिन्न देशों, संस्कृतियों और समुदायों के बीच मित्रता, आपसी सम्मान और शांति को बढ़ावा देना है। इस दिन का संदेश केवल व्यक्तिगत दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन वैश्विक भाईचारे और सहयोग का प्रतीक भी माना जाता है। तो आज इस अवसर पर हम अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करें और प्रेम, विश्वास और सद्भाव के इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का संकल्प लें।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी नीला आकाश। दोस्तों, पानी की हर बूंद कीमती है, क्योंकि धरती पर पीने का जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी हो जाती है पानी की हर बूंद को बचाना, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को साफ स्वच्छ जल दे सकें। और इसी दिशा में कैच द रेन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। श्रोताओं, ये अभियान हमें संदेश देता है कि जहाँ भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, तो वर्षा जल को संचित करें। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का जो संग्रह है वो बढ़ाना है, और साथ ही साथ भूजल स्तर को सुधारना भी है। ये अभियान तालाब, कुएं, झील और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण की बात करता है और उनको पुनः जीवित करना

गुड्डी। अभी इस फिल्म में आपने ये गीत का जो गीत सुना और आवाज़ थी वाणी जयराम की। और श्रोताओं, देखिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की, जो मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी या गिरवी के पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ऋण और ब्याज पर छूट प्रदान करती है। श्रोताओं, योजना की मुख्य विशेषता ये है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश

सुधार करें ही करें और अपनी डाइट में इन सप्लीमेंट्स को शामिल करें, तो स्वस्थ महिला जो है वो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की आधारशिला है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि महिलाएं अपना ध्यान रखें, और देखिए महिलाएं तो अपना ध्यान रखेंगी ही रखेंगी, अगर हमारे साथ के लोग, हमारे अपने लोग भी महिलाओं का ध्यान रखें तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी बेमिसाल। और श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और आज आपके साथ हूँ मैं प्रतिभा। श्रोताओं, अब बात करते हैं उस सम्मान की जो बच्चों

उत्साह, उल्लास और सामूहिक जीवन का प्रतीक है, जिसे खुशी के अवसरों पर उल्लास के साथ मनाया जाता है। भाई वाकई भारतीय कला संस्कृति जीवंतता का पर्याय है।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक

0: का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कुछ ही पलों पहले आपने सुना था गाना कहो ना कहो। इस गीत को सुनते ही दिल 2004 के उस दौर में चला जाता है, ये बात आप भी मानते होंगे। अब आते हैं कहानी पर। सिमरन यानी कि मल्लिका शेरावत बैंकॉक में अपने पति सुधीर यानी कि अश्मित पटेल के साथ एक आलीशान जिंदगी जी रही है। बाहर से सब परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर अंदर सिमरन बहुत अकेली है। सुधीर अपने काम की दुनिया में इतना व्यस्त है कि सिमरन के पास ना तो उसके लिए वक्त है और ना ही प्यार। जब दिल के अंदर ना प्यार हो और दिल अंदर से खाली हो तो गुमराह होना आसान हो जाता है। एक दिन बारिश के बीच सिमरन की मुलाकात होती है अपने कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड सनी से। सनी बेपरवाह, जुनूनी और सिमरन की तन्हाई को भांप लेता है। सनी की आंखें और उसकी बातें सिमरन को उस अतीत में खींच ले जाती हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जुनून था। बारिश की बूंदों के बीच जब ये दोनों करीब आते हैं तो बॉलीवुड को मिलता है एक सबसे रोमांटिक और प्यारा गाना जिसे गाया था कुणाल गांजावाला ने। तो आइए इस गाने को सुनते हैं जिसने कुणाल को स्टार बना दिया था।

श्रोताओं, भी आपने गीत सुना और भीगे होड़ते रहे। इस गीत को सुनना और सुनने के बाद जो महसूस होता है वो कुछ अलग ही है। दोस्तों, हर गलत कदम की एक कीमत होती है। कहानी में सिमरन और सनी का यह अफेयर सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहता, ये बन जाता है एक खतरनाक पागलपन। सिमरन को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है और अपने पति को धोखा दे रही है। वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है, पर वहीं सनी है। सनी आसानी से उसे छोड़ने वालों में से नहीं था। सनी का प्यार अब सनक बन चुका था। वो सिमरन को ब्लैकमेल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुधीर को अपनी पत्नी के बदले हुए बर्ताव पर शक होने लगा। वो एक निजी जासूस को सिमरन के पीछे लगा देता है। सिमरन एक तरफ अपने पति के शक से डर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनी की सनक से। दिल में खौफ है, लेकिन बाहर मुस्कुराने की मजबूरी। इसी कश्मकश को बयां करता है

होता है और वो बदला लेने के लिए लौट आता है। अंत में सुधीर अपनी पत्नी सिमरन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है और इस तरह सिमरन को अपने पति के सच्चे प्यार का एहसास होता है। इस पूरे थ्रिल और इमोशन को जो गाना सबसे ज्यादा खूबसूरती से जोड़ता है, आइए उस गाने को सुनते हैं।

श्रोताओं, भी आपने खूबसूरत गीत सुना और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मर्डर की। महेश भट्ट और अनुराग बसु ने मिलकर 2004 में जो थ्रिलर फिल्म बनाई उसने इमरान हाशमी को बॉलीवुड का उभरता सितारा बना दिया। वहीं मलका शेरावत उस दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस बनकर उभरी और इस फिल्म के संगीतकार ने कई सारी बुलंदियां छुई। आज भी जब बारिश होती है या रात के सन्नाटे में कोई थ्रिलर देखने का मन होता है तो इस फिल्म की याद हमें आती है। उम्मीद है आज का ये फिल्मी सफर और इस फिल्म के गाने आपको बेहद पसंद आए होंगे। सुधीर, सिमरन और सनी की ये कहानी, ये आइकॉनिक गाने जिसे अभी आपने सुना, तो चलते चलते आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का एक और गीत और अपने दोस्त को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ਹੋਣਾ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र नीट पेपर लीक मामले ते विद्यार्थियों के विरोध मुजहरे दौरान जंतर मंतर

एक गंभीर अपराध होया, पर हाई कोर्ट ने इस नूं पूरी तरह उलट हुकम विच रद्द कर दिता। हाई कोर्ट ने पहला कहा सी कि आप नेतावां विरुद्ध पहली नजरे कोई भी केस नहीं बनदा सी अते भारतीय दंड संहिता तहत लाए गए अपराधां दे तत गैर हाजर सन। नतीजे वजो इस ने FIR अते दर्ज चार्जशीट नूं रद्द कर दिता। FIR 2020 विच दर्ज कीती गई सी, जिस विच इल्जाम लाया गया सी कि बिजली दरां विच वाधे विरुद्ध आप दे विरोध मुजाहरे दौरान मान समेत कई पार्टी नेतावां ने करीब 750 तों 800 पार्टी वर्करां नूं चंडीगढ़ विच पंजाब दे समकाली मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दे निवास वल मार्च करन लई उकसाया सी। पुलिस ने

0: खबरों तो बाद।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं कलीम अहमद। राज्यसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी, जिसका मकसद पेपर लीक के कसूरवारों के लिए सख्त कानून बनाना है। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के सबब लोकसभा की कार्रवाई में रुकावट पैदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान RAF की जानिब से इस्तेमाल गोली बारूद की तफसीलात को महफूज

0: रुकावट पैदा करना पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक नहीं है।
1: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पद जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पद जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं।
0: शोरगुल जारी रहा और

महीने के आगाज पर लोगों को मुबारकबाद दी है। भारत के महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और मगरबी मध्य प्रदेश में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, केरला, माहे और राजस्थान में अगले दो दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक के साहिली और जुनूबी अंदरूनी इलाके, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में कल तक इसी तरह के हालात बने रहने का इम्कान है। इस दौरान पंजाब, ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी तेज से बहुत तेज बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने शुमाल मशरकी भारत में अगले दो से तीन दिन तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान कौमी राजधानी में

0: any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship, any associates, any subcontractors, any provider of support of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination.
1: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा

0: केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।

पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश

0: गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भिखाभाई रबारी पर दाव लगाया है।

विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त

0: के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले

0: मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूह से अमेरिकी सैनिकों

0: फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हो रहा है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी दोस्त और होस्ट रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज मैं लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक ही कलाकार।

है छोटा सा, जो बहुत अच्छा है ना, ये जोड़ता है हमें एक दूसरे के साथ, और आपके जवाब जब हमारे पास आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिनका आज जन्मदिन है, वो हैं आज के हमारे सितारे सोनू निगम जी। 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम स्वयं एक गायक थे। घर में संगीत का माहौल था, इसलिए सुरों से उनका रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया। कहते हैं कि कलाकार पैदा नहीं होता,

जी हाँ, हमारे पास मैसेज आए हैं नितेश जी का और दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना, कृष्णा देवांगन, यासीन अनजान जी का, या साइमा हसन बाबू मिफरा बेबी, और जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमोत कौर मनु जी का और मसूर हसन जी का मैसेज आया हमें। आर कुमार जी का पंजाब से वर्डिंग खेड़ा, मिंटू, पिंकी, लवली, आरती और दिग्दर्शन गौर जी का भी हमारे पास, कविता गौर जी का मेरठ से मैसेज आया है। और फिर हमारे पास फगुराम यादव जिनका, उन्होंने भी सही जवाब, सभी ने सभी सही जवाब दिया, संबलपुर कांकेर, फगुराम, ज्योति, ओजस्वी।

किया और ये गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि सभी जानते हैं, है ना। और हमारे पास सोनू निगम जी की जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, ये कार्यक्रम ही हमारा उन पर आधारित है। आज उनका जन्मदिन जो है, गुरमीत सिंह जी का, मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी का हमारे पास संदेश आया है, निसार अली जी का भी आया है, मोहम्मद कमर जी का आया है, गुरनौत आदिर कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और हमें इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारे साथ। संजय ढिंगिया जी का भी हमारे पास मैसेज आ गया है, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया जी का, और

हमारे पास और भी मैसेज आए हैं। अमर रमेश कुमार खत्री जी का मैसेज हमें आया है और बोधराज कोरवाल जी का हमारे पास मैसेज आया है उत्तम नगर से, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। इसी तरह से हमें मैसेज करते रहिए और हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे कि हम कार्यक्रम आपके लिए अच्छा दे पाएं। थैंक यू, धन्यवाद।

जो देश के लिए कुर्बान होते हैं उन्हें हम सलाम करते हैं। उनकी आवाज़ में वो दर्द, वो जो जवान हमारे लिए करते हैं ना, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन इनके जज्बात, जो गायिका है, वो जज्बात हमारे सबके जुड़े हुए हैं। तो मैं सलाम करती हूँ जो भी सरहद पर बैठे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी का आज जन्मदिन है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई। और दोस्तों, मैं बस, अब समय कम हो चुका है, जाना पड़ेगा, तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ।

0: साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आदाब सत श्री अकाल, आपकी दोस्त और होस्ट रहना तवर का स्वीकार कीजिए। प्यार भरा नमस्कार, मैं फिर आ गई आपके साथ आपके ही अगले कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी में। जी हाँ श्रोताओं, अब हम लेकर चलेंगे 1950 और 60 के दशक के उस गोल्डन एरा में जहाँ प्यार की बातें शोर नहीं करती थी बल्कि सुरों में बहती थी, गीतों में मासूमियत, शब्दों में कविता हुआ करती थी। और धुनों की बात करें तो धुनें जो होती ना दिल की धड़कनों में बसती थी। प्यार का इजहार आँखों में आँखों से ही हो जाता था, कोई कुछ कहता नहीं था, बस आँखों से बयां हो जाता था। और वो शब्द ऐसे थे कि आप कहते थे और दूसरा समझ जाता था। तो इस आधे घंटे में उस फिल्मी गलियारों को हम महसूस करेंगे जो सदाबहार गीतों का दशक कहलाता है। आज हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं दोबारा, यानी कि ईमेल आईडी के ज़रिए, जिसका हमारा कार्यक्रम तो आप जानते हैं मैटिनी मेलेडी, और जुड़ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के थ्रू ip.radio.delhi@gmail.com। आप हमें मैसेज करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम भी जानना चाहेंगे कि आप हमारा कार्यक्रम कैसे पसंद कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, और हम उसमें अपनी और सुधार करेंगे। और

तो सुनते रहिएगा और इसी तरह से लुत्फ़ उठाते रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले गीत। ये जो हमने सुना, हमने आपसे पूछा था कि कौन से फिल्म का है, तो ये चलती का नाम गाड़ी 1958 की फिल्म का और किशोर दा की आवाज़ का ये खूबसूरत नगमा आपने सुना। अब हम बढ़ते हैं अगले एक प्यारे से खूबसूरत नगमे की ओर।

सामीन, अदम गोंडवी का शेर है, कांटों में राह बनाते हैं हौसले वाले, कांटों में राह बनाते हैं हौसले वाले, कदमों से धूल उड़ाते हैं हौसले वाले। सामीन, खुद एतमादी,

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

印度立广播电台听众朋友们，接下来播送一篇短评。印度通过科学政策，在老虎保护领域引领世界。通过科学政策和

तक उम्मीदों को और मजबूती दी। एक और पैरा एथलीट दिलीप महाड़ू गावित ने स्वर्ण पदक जीतकर नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया, तो दूसरी ओर लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक अपने नाम किया। मुक्केबाजी में भी भारतीय मुक्केबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक लगभग पक्के कर लिए हैं। बात करें पैरा एथलेटिक्स की, तो भारत के दिलीप महाड़ू गावित ने पुरुषों की पैरा स्पर्धा मेन्स 100 मीटर T47 में

मुकाबले जीते और सेमीफाइनल में जगह बनाई और इसके साथ ही देश के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर दिए। अब इन खिलाड़ियों की निगाहें फाइनल में पहुंचकर पदक का रंग बदलने पर हैं। जहां पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 7 पदक जीते थे, वहीं इस बार ये संख्या 10 तक पहुंच चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि ग्लासगो में भारत की मुक्केबाजी टीम एक बार फिर पदकों की बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। सभी सेमीफाइनल्स कल यानी 31 जुलाई को खेले जाएंगे।

अपडेट्स की बात करें तो यही अपडेट्स है। इसके अलावा बात करें अगर साइकिलिंग की, तो मेंस टीम स्प्रिंट में भी भारतीय टीम जो है इस समय प्रतिस्पर्धा में है, और जिसमें रोजिस सिंह यांगलेम, डेविड बेकम, एल्का थोंगो, रोनाल्डो सिंह, लेतो नजाम और जेम्स सिंह कैथल कलाम भारतीय टीम का हिस्सा हैं। और फिलहाल अगर ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो वहाँ पे भारतीय टीम सातवें स्थान पर है।

स्कॉटलैंड चौथे स्थान पर है, जबकि नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया क्रमशः पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर हैं। भारत इनके ठीक पीछे आठवें स्थान पर मौजूद है। हालांकि प्रतियोगिता अभी बाकी है और आने वाले दिनों में भारत की मजबूत दावेदारी वाले कई मुकाबले होने हैं। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग और अन्य स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीद बनी हुई है। यदि भारत स्वर्ण पदकों की संख्या बढ़ाने में सफल रहता है तो पदक तालिका में कई स्थानों की छलांग लगाना संभव है। ग्लासगो में इस बार प्रतियोगिता का स्वरूप भले ही पहले के मुकाबले छोटा हो, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा किसी भी मायने में कम नहीं है। जिन खेलों में भारत हिस्सा ले रहा है उनमें खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और वेटलिफ्टिंग में भारत ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है, जबकि अगले कुछ दिनों में कई और पदक भारत की झोली में

दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: एसएमएस हमें भेजा है सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: और गामनाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। और ये जो रागनी है ये राजा उत्तानपाद के किस्से से है, जब रानी सुरुचि और सुनीति दो बहनें थी, सुनीति बड़ी रानी थी, उनके बाद जब सुरुचि से शादी हो गई तो जब वो घर पे शादी होके आती हैं तो कहती हैं कि सुनीति को घर से बाहर निकालो, तो आपस में जो समझाते हुए राजा उत्तानपाद सुरुचि को कहते हैं तो उन दोनों का क्या संवाद होता है, आइए सुनते हैं धर्म सिंह और सरोज कपूर की आवाज़ में।

और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू, और ये हैं हितेंद्र दास असम से लिख रहे हैं, और जलालपुर पूरा जिला सहारनपुर यूपी से स्वर्ण सिंह प्रजापति, शिवम प्रजापति आर्यन और इनका परिवार, गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश और भूवेश काम्बोज, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश युद्धव कड़वासरा, और

0: देखे और इनके परिवार के सभी सदस्य। एकता कॉलोनी रोहतक सीता से हमें SMS भेजा है सीताराम कांगड़ा, पविता बोट और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। संबलपुर कांकेर से भी हमें SMS भेजा है फागुराम यादव, ज्योति राय यादव और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा शर्मा ने भी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें SMS भेजा है चिट्टा मंडी रोड यमुनानगर से। और ये SMS हमारे पास आया है सालेहा भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से भेजने वाले भाई हैं जीतू ध्रुव केवल और इनके परिवार के सभी सदस्य। नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से SMS हमें भेजा है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ग्राम पाजौनिया जिला जालान उत्तर प्रदेश से भी हमें SMS भेजा है सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। खैल बाजार पानीपत से ये SMS भेजा है नरेश मल्होत्रा नीटू और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: तो सुनते

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार, और आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता

मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2000

0: उससे ज़्यादा अच्छी पानी की बचत होती है और इनसे भरपूर पैदावार मिलती है। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बेल वाली फसलें हैं उनमें अगर पानी ज़्यादा आ गया है तो निकासी तुरंत करें, पानी की कमी है तो उसमें पानी दिया जाना भी ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी तकनीकें कृषि के क्षेत्र में चल रही हैं और बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, और जो किसान कॉल सेंटर है स्कीम भारत सरकार की, उसके अंतर्गत हमारे किसान भाई सीधे फ़ोन करके किसान कॉल सेंटर पर कोई भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं और किसी भी समय वो फ़ोन कर सकते हैं। अगर उस समय विशेषज्ञ टेलीफोन पर उपलब्ध होते हैं वो सीधा जवाब देते हैं, नहीं तो आपको एक समय बता देते हैं कि उस समय आपका समाधान इसका किया जाएगा। और इसके अलावा जो एम किसान पोर्टल है उसके माध्यम से हमारे किसान अपने फसल के उत्पाद को किसी दूसरे हिस्से में भी बेच सकते हैं और उनको पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या रेट चल रहा है। एक प्लेटफॉर्म पर पूरे देश के किसान आ जाते हैं और जो आजकल की तकनीकें हैं या पोर्टल सरकार ने बनाए हैं उनका फ़ायदा उठा के हमें कृषि में अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, ताकि जो हम कृषि का उत्पादन कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।
1: बिल्कुल
0: और जो नई नई टेक्निक हैं आजकल, वो टेक्निक आ गई हैं जिनके माध्यम से आप न केवल अपने श्रम को बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, नई
0: और
1: तकनीकी है, नई जानकारियां हैं और कृषि के क्षेत्र में तो

कि अब खेत में चाहे सब्जी की तुड़ाई की बात हो, चाहे आलू निकालने की बात हो, चाहे बुआई की बात हो, सब मशीनों से किया जा रहा है और उससे किसान को भी आसानी हो रही है और पैसा भी बच रहा है और उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। हमारे देश में नई तकनीक आई है ड्रोन, जिसका खेती में बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह का योगदान है, किस तरह की समय बचत होगी, किस तरह की लागत कम होगी, आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर शंकर गोयनका जी।

0: ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा जहां पर कोई भी युवा जो 10वीं पास है वो
1: जी
0: ड्रोन हमसे ले सकता है। कृषि विमान के अंदर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको हम ड्रोन देते हैं और ड्रोन लेने के लिए पैसा देते हैं, जो कि बहुत ही न्यूनतम बैच के ऊपर 6% बैच पे उसको पैसा मिलता है।
1: अच्छा,
0: और वो अपने गांव में जाकर हम उसको काम भी देते हैं, तो वो कृषि विमान ड्रोन ले लेकर अपने गांव में जाए, हम उसको 8 लाख से 12 लाख का काम देते हैं ताकि वो अपने गांव में रहकर अपना जीवन सुखी से व्यापन कर सके।

0: स्टेप फार्मिंग है, तो ये क्या करेगा, छिड़काव करेगा, रुक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर छिड़काव करेगा, फिर रुकेगा, फिर आगे से छिड़काव करेगा। तो ये क्या करता है कि जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसको वो मैप करता है, स्कैन करता है और वो एआई के माध्यम से अंदर डाल लेता है, और फिर वो यदि ऊंचा है तो ऊपर जाएगा, नीचा है तो नीचे आएगा, और समान तरीके से पत्ते पत्ते पर छिड़काव करता है, और यही कृषि विमान की खास बात है।
1: और जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब, हमारे

0: एकड़ में रहा था, 2 एकड़ में छिड़काव करेगा। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक होने की वजह से कई लोग शुरू में कहते हैं साहब मेरा खेत छोड़ के मेड है, उसके बाद में बाजू वाले के खेत में दवाई चले जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भ्रांति पे मत जाइए, जो आपका खेत है उसी खेत में छिड़काव करेगा और आपकी एक बूंद दवाई भी दूसरे के खेत में नहीं जा सकती है। आपकी दवाई आपके ही खेत में छिड़की जाएगी, चाहे वो 1 बीघे का हो चाहे 10 एकड़ का हो।
1: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के मन में ये भी जिज्ञासा हो रही है कि भाई जब हम दवा का इस्तेमाल करेंगे खेत पर जाकर, तो क्या हाथों से ही दवा उतना ही डालना पड़ेगा जितनी जरूरत है, या इसका भी कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है?
0: इसका जो टैंक होता है वो 10 से 12 लीटर का होता है
1: जी।
0: तो 10 लीटर का टैंक हुआ तो उसमें 10 लीटर पानी डालते हैं और जितनी दवाई है वो उसमें डाल देते हैं। तो आप अच्छे उपयोग के लिए क्या करना चाहिए कि बाहर

0: दवा का इस्तेमाल करेंगे खेत पर जाकर, तो क्या हाथों से ही दवा उतना ही डालना पड़ेगा जितनी जरूरत है, या इसका भी कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है?
1: इसका जो टैंक होता है वो 10 से 12 लीटर का होता है।
0: जी
1: तो 10 लीटर का टैंक हुआ तो उसमें 10 लीटर पानी डालते हैं और जितनी दवाई है वो उसमें डाल देते हैं। तो आप अच्छे उपयोग के लिए क्या करना चाहिए कि बाहर बाल्टी में एक 10 लीटर पानी लेना चाहिए, दवाई डाल देनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से घोलकर उसका जो टैंक है उसमें डाल दीजिए,
0: जी
1: फिर वो ऑटोमेटिक उड़ के ऑटोमेटिक तरीके से छिड़काव करके आ जाएगा।
0: मतलब जितने उसको दवा डालनी है वो 10-12 लीटर का जो टैंक है
1: हाँ,
0: उसके हिसाब से, वो 1 एकड़ के लिए है?
1: 10 लीटर पानी से ज्यादा आपको नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं साहब 20 लीटर का दो, 50 लीटर का दो, आपको कोई जरूरत नहीं। खेत के लिए आपको 10 लीटर का टैंक चाहिए जिसके अंदर पानी डले, 1 एकड़ के लिए 10 लीटर ही पानी चाहिए, न 11 चाहिए न 9 चाहिए, और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मूला है, उसके हिसाब से दवाई अच्छे से मिलाकर घोलकर आप उसके टैंक में डाल दीजिए। कई खेतों में ऐसा भी होता है कि एक के साथ दो तरह की दवाई मिलाई जाती है, तो जो भी दवाई आपको मिश्रण करना है आप बाहर करिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए, टैंक में डालिए और टैंक उसको अपने आप छिड़काव करेगा।
0: आखिर में डॉक्टर गोयनका जी, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि नई तकनीक अपना के किस तरह हम उत्पादन बढ़ाएं और किस तरह पैसे को बचाएं?
1: जब भी नई तकनीक आती है दुनिया के किसी मुल्क में जाइए, शुरुआत में मुश्किल लगती है। जैसे मोबाइल था, कितना मुश्किल लगता था, आज 1 साल का बच्चा भी जो है घर में पैदा होते ही मोबाइल चलाने लग जाता है। सेम चीज टेक्नोलॉजी।

0: गाजी, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि नई तकनीक अपना के किस तरह हम उत्पादन बनाएं और किस तरह पैसे को बचाएं?
1: जब भी नई तकनीक आती है, दुनिया के किसी मुल्क में जाइए, शुरुआत में मुश्किल लगती है। जैसे मोबाइल था, कितना मुश्किल लगता था। आज एक साल का बच्चा भी जो है घर में पैदा होते ही मोबाइल चलाने लग जाता है। सेम चीज टेक्नोलॉजी के साथ है। मुझे लगता है जो आज की लीडरशिप है, जो ड्रोन को लेकर आई, इससे बड़ा विजन नहीं हो सकता। आने वाले समय में भारत में 6,38,000 गांव है। हर

0: अब भाइयों को क्या सुनवा रहे हो?
1: बिल्कुल करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं पाल मिठारिया की आवाज में।
2: भाइयों, कृषि के उत्पादन बढ़ाने में

0: और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पंजाब में बार बार पेपर लीक के कारण 30 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। श्री मल्होत्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया पंजाब के छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है।
1: केजरीवाल की ढकोसलेबाजी, उसके डबल स्टैंडर्ड्स, उसकी हिपोक्रेसी, अराजक बिहेवियर, ये सब पंजाब के छात्रों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहा है। पंजाब के छात्रों को न्याय तब मिलेगा जब पंजाब में जिस फार्मास्यूटिकल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है वो दोबारा होनी चाहिए।
0: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोहरे मापदंड अपना रही है।
2: पंजाब में भी जब पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा पंजाब में, तो वहां

0: बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे, वित्तीय अनियमितताएं और प्रशासनिक उल्लंघन सामने आए हैं।
1: निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय बिना अग्नि सुरक्षा स्वीकृति के 43 कक्षाओं का अवैध रूप से संचालन कर रहा था। इसके अतिरिक्त परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध टिन शेड संरचनाएं निर्मित की गई थी। बिना अनुमति भूजल का दोहन किया जा रहा था। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा था। अभिभावकों से

ये है। वहीं दिल्ली पुलिस ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा से दिल्ली लाई जा रही 400 क्वार्टर शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाला वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 1 अगस्त को अपना मासिक सुविधा शिविर आयोजित करेगी। ये शिविर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जयसिंह रोड स्थित परिषद के कन्वेंशन सेंटर में लगेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने स्पष्ट किया कि अनुबंध पर कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारियों को हटाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि अगले 5 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय को दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में आज मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जल जनित बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिला। महापौर प्रवेश वाही ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा बाधित की। श्रावण का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने भी श्रावण मास के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण कल से 30 अगस्त तक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन मुकाबला सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 के बीच होगा। इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीम खेलेंगी। अंत में

0: आशिक हूँ,
1: मैं आशिक हूँ,
0: मैं जीरो हूँ,
1: मैं जीरो हूँ।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं न

0: राष्ट्र गौरव का विधेयक है या किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक

0: कहा कि कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: भारत सरकार ने पहले ही कहा।

अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे

0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले दो से तीन दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुजवजा बिल की हिमायत करती है, ताहम इसमें शफाफ और पेपर लीक से पाक इम्तहानात को यकीनी बनाने के लिए सख्त शिकों की कमी पाई जाती है। पार्लियामेंट ने पेपर लीक मुखालिफ बिल को मंजूर किया, जिसमें सख्त तरीन सजाएँ और फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने की गुंजाइश शामिल है। इसका मकसद इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। यह बिल राज्यसभा में कल पास हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी एशिया के जारी तनाज़े और मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों की जानिब से किए गए इक़दामात के तनाजुर में सूरत हाल का जायज़ा लेने की गरज से सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी CCS की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग से ख़िताब करते हुए जनाब मोदी ने रूनुमा होने वाले तमाम वाक़ियात पर

होगा, उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। महकमा दाखिला ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है तो गिरफ्तारियों पर नजरसानी करने और गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा करने के लिए कार्रवाई फौरी तौर पर की जाएगी। महकमे ने कहा कि दिल्ली सरकार एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ किसी तरह की मजीद मनफी कार्रवाई करने की तजवीज़ नहीं देती और ये मामला इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई किए बगैर ख़त्म समझा जाना चाहिए। इसने मजीद कहा कि

सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। ये मुफाहमत नामा मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ मरहला एक के क़्याम के लिए किया गया है। ये इकदाम टेलीकॉम आलात और मुंसलिका टेक्नोलॉजियों के लिए आलमी दर्जे का मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम वज़ा करने के लिए किया गया है। ये रोज़गार के नुमाया मौके वज़ा करेगा, इलाकाई सनअती तरक्की को फ़रोग देगा, सप्लाई चेन लचक को मुस्तहकम करेगा और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इख्तरा के लिए भारत को एक आलमी हब के तौर पर कायम करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस समझौते पर दस्तखत करना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक नए बाब का आगाज़ है। तकरीब से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि ये इकदाम रियासत को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, पैदावार और आलमी बरामदा

खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज हासिल होगा जो कौमी तराने को हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मल्लाहों समेत शहरियों के मफादात के तहफ्फुज के लिए एक मुत्तहिदा निज़ाम कायम किए जाने पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो उन अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने नीट एहतजाज में हिस्सा लिया था। अलबत्ता मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को कोई तहफ्फुज हासिल नहीं होगा। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया के तनाजे के फौरी हल की उम्मीदें मांद पड़ गई हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

सब महदूद। हजरत आदम से ईसा तक जितने नबी हैं सब महदूद। दोनों जहाँ के इल्म का दरिया, शाह मदीना आपके नाम। दोनों जहाँ के इल्म का दरिया, शाह मदीना आपके नाम। मेरी ज़बाँ से आपकी हो तकमील सना मुमकिन ही नहीं। मेरी ज़बाँ से आपकी हो तकमील सना मुमकिन ही नहीं। फिर भी ये अल्फाज का तोहफ़ा, शाह मदीना आपके नाम। फिर भी ये अल्फाज का तोहफ़ा, शाह मदीना आपके नाम। मेरे दामन को भी भर दें आज तो आका रहमत से। मेरे दामन को भी भर दें आज तो आका रहमत से। रहमत रब का कुल हर दरवाज़ा, शाह मदीना आपके नाम। रहमत रब का हर दरवाज़ा, शाह मदीना आपके नाम। काबा हो या अर्ज़ मदीना, कौसर हो या अर्श मजीद। काबा हो या अर्ज़ मदीना, कौसर हो या अर्श मजीद। मालिक कुल का सब सरमाया, शाह मदीना आपके नाम। उसकी किताब नूर का आका, आप ही तो दीवा चाहें। उसकी किताब नूर का आका, आप ही तो दीवा चाहें। लफ्ज़ कुन का सारा किस्सा, शाह मदीना आपके नाम। लफ्ज़ कुन का सारा किस्सा, शाह मदीना आपके नाम।

0: अनवारे शहे दीन मुबीन देख रहा हूँ, बर्दोशे जमी अर्शे बरी देख रहा हूँ। अनवारे शहे दीन मुबीन देख रहा हूँ, बर्दोशे जमी अर्शे बरी देख रहा हूँ। मैं खुद को मदीने के करी देख रहा हूँ, मैं खुद को मदीने के करी देख रहा हूँ। क्या मंजरे फिरदौसे बरी देख रहा हूँ, क्या मंजरे फिरदौसे बरी देख रहा हूँ। जब से है मकीन सरवरे दीन खाने दिल में, जब से है मकीन सरवरे दीन खाने दिल में, दिल गुम्बदे खजरा के करी देख रहा हूँ, दिल गुम्बदे खजरा के करी देख रहा हूँ। ये रोज़े सुल्तान दो आलम है कि जिस पर, ये रोज़े सुल्तान दो आलम है कि जिस पर, दरबानिये जिब्रील अमी देख रहा हूँ, दरबानिये जिब्रील अमी देख रहा हूँ। ये रोज़े सुल्तान दो आलम है कि जिस पर, दरबानिये जिब्रील अमी देख रहा हूँ। किस दर्जा दिया साथ मेरा इश्क नबी ने, किस दर्जा दिया साथ मेरा इश्क नबी ने, रोज़ा है जहाँ खुद को वहीं देख रहा हूँ। किस दर्जा दिया साथ मेरा इश्क नबी ने, रोज़ा है जहाँ खुद को वहीं देख रहा हूँ।
1: दिगान अजीज़, आखिरीन तराना ये रूहानी बेसदा ये उस्मान खान व हम नवायानश रा पेश नबी।

0: आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना,

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि उसमें मिलने वाला दर्द भी अपना सा लगने लगता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने की नहीं बल्कि उम्र भर महसूस करने की चाह होती है। जी हाँ, जब रात में खामोशी आ जाती है और ऐसे में दिल बस उसी एहसास को फिर से जीना चाहता है, उस एहसास

0: करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदन

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफ़र यहीं तक। सुरभि को दीजिए अनुमति, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था।

वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा

दोस्ती में जब प्यार की मिठास खुल जाए तो हर मुलाकात यादगार बन जाती है। अपनेपन की यही खुशबू दिलों को

कुछ रातें सिर्फ चांदनी की नहीं, यादों और एहसास की भी होती हैं। ऐसी रातें दिल के सबसे खूबसूरत ख्वाबों का संजो कर रखती हैं।

हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेक्तुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है अरुणिमा और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सूरत और सीरत से। लता मंगेशकर की आवाज़ में संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार शैलेंद्र।

फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

रहेगी समाचार प्रभात की। आठ बजकर 15 मिनट पर मॉर्निंग न्यूज के अंतर्गत आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 8:30 का समय है उर्दू समाचार का। आठ बजकर 45 मिनट पर कार्यक्रम स्वर गंगा में

बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम

15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें। दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के

है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।